जिसका हूँ भैया रोनी है भैया कालू की तो सुनो भैया सामने लियो आडो सिस्ते बागू भैया।